भौसम्बित बिनु महर्जन सोनुतक वावैगु धैदिगु ख वेकया कथ कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या फुक्क लाग्या नाप गण्डकी व लुमिन प्रदेश या पश्चिमी लाग्या पश्चिमी फे या लिचो लाना चुङ्गुदो कोशी मधेस व बागमती प्रदेश या फुक्क लागा व गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या लिङदुगु लाग्या झरिया फे नाप पश्चिमी फे या भो लिचो लाना चुङ्गु ख नेपाली काङ्ग्रेस संशोधित विधान पारित जुगुदो पार्टिया चिन्याको गु त मुजिया मिग न्यागु बन्द्र सत्र महामन्त्री प्रदीप पौडेल हेव्यादिको संशोधित विधान पारित जुगु ख आ पार्टिया केन्द्रीय कार्य समिति निस व गुइन हेम दैगु व्यवस्था जुगुदो सभापति छम वरिष्ठ उपसभापति छम उपसभापति पेम पेम उपसभापति छम मिसा अनिवार्य दुथेका माघु धागुदो छम मिसा नाप सोम महामन्त्री व चिन्याम सह महामन्त्री जी दाबरी केन्द्रीय दुज पाखे छमिसित लिएगु जी केन्द्रीय दुज खुल्ला पी न्याम मिसा चिन्याम फुक्क प्रदेश छम मिसा नाप पेम लिए सोनिग पाखे छम मिसा नाप निम लिएगु व्यवस्था यागुदो अथे आदिवासी जनजाति च्याम मिसा नाप निम खस आर्य च्याम मिसा नाप चिन च्याम दलित न्याम मिसा नाप चिन पेम मधेसी न्याम मिसा नाप चिन सोम थारू जाति पाखे निम मिसा नाप खुम नाप थिति समावेशी कोटा केन्द्रीय दुज लेतेङ्गुदो थोए झोले त मुजा प्रतिनिधि लिपाङ्गु ना पिथङ्गु दु सुच कथ प्रतिनिधि ल्या नेद सचिव चिन्पेम थेङ्गुदो थौ शनिले पेता इतक मनोनयन पौ दर्ता यागु ज्याधल दु पूर्व सांसद अशोक रोका मिग त्रिभुवन विश्वविद्यालय सिचन अस्पताल मार्जगन्जे वास यागु झोले मन्त जन्युद वेक ताइतक बोती कयादिम पुलाङ्गु नेकपा माओदिया पूर्व सांसद ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसिन्हा संचार व पत्रकारिता लाग्या त व्यवस्थित व लिचो लाके त छगु पिस्क अधिकार दुगु नियामक संयन्त्रमा धैदिगुदो थिथि प्रदेश संचार रजिस्ट्रार पी नाप मन्त्रालय जुगु सल ज्याजुले वेक्ल थथे धैदिगु ख वेक्ल प्रेस काउन्सिल विधेयक व आम संचार विधेयक पाखे नियामक निकाय अधिकार बिगु नेतना दिल ऊर्जा जलस्रोतले सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ विद्युत महसुल या विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली या त व्यवस्थित या त नेपाल विद्युत प्राधिकरण या त उज व्यादिगुदो वेक्ल सूच प्रविधि या युगे नागरिक बिल पुले त ज्याकुती ता इ पिया चोनिमागु अवस्था नङ्केगु नेतना दिल मन्त्री श्रेष्ठ विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति पाखे डिजिटल पेमेन्ट या त प्रवाह कर कथ त व्याकेगु योजना स्वीकृत जुगु जानकारी व्यादिसे वेक्ल उक्या त कया तकिमे थेङ्क हे प्रभावकारी कार्यान्वयन व व्यादिल पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ या सुझाव कथ सार्वजनिक खरिद ऐन या निकोगु संशोधन यानागु नेतनादिगुदो सार्वजनिक खरिद ऐन या निकोगु संशोधन या झोले महासङ्घ या आय कार्य समिति महत्त्व जागु सुझाव भोग्ने सुब्या नाप त्यसना दिल अथे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम निजी लागा ओगु सुझाव या त सरकार महत्त्व जागु दस्तावेज या रूप कया छेलबुला यङ्केगु नेतना दिल कार्यशाला लगानी प्रबन्धन विकास निर्माण त लिचो लाकेगु रणनीति कानुनी व्यवस्था पिङ्के त स्वापु दुपी नाप सल व्याका चुङ्गुदु संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल रान्तिक हस्तक्षेप हुने नेपाल वायुसे निगम थराइसाई जुगु नेतनादिगुदो प्रदेशसभा अन्तर्राष्ट्रिय स्वापु व पर्यटन समिति या मु ज्या मन्त्री पौडेल निगम या लव द्याप जग मुखु से दे या हनबना ख धाइदिल आय सरकार निगम या त पुङ्क स्वतता दिएकोगु व स्वतन्त्रता बिगु नेतनादिल प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल औपचारिक भ्रमणीय नीति मिग बेलायत झायादिगुदो बेलायती सेना या चिफ अफ द जनरल स्टाफ सर रोली वाकर या बोन्या छ अङ्क या औपचारिक भ्रमणीय नीति मिग वेक उके झायादिगु सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनलाई धागु ख
प्रधान सेनापति सिग्देल यात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बलाधिकृत रथी प्रदीप जङ केसी तोता दिगुख ब्रह्मन सलसन ह्य निसेया निगु दे या स्वापु यात बलाके त तिब बिगु धागु दो वेक मदै गुली वेक यु पदे बलाधिकृत रथी प्रदीप जङ केसी कायम मुकायम प्रधान सेनापति या भाला कुब्या दिगु दो दाङ या देउखुरी यात्रुवाहक बस व अटो लाना निम सिगु दु प्युठान या सरुमा रानी गाउँपालिका पाँच हात्तीखाल या पी न्याद दुम नमसरी बराल व निला दुम मचा जेनिसा सोमै मगर सिगु ख घापा जुपी सोमेसित लम्बै अस्ताले वास या नाचुङ दु बागलुङ या निम्सी खोला गाउँपालिका तिन बोरा गामे सडक देखेको झोले चलख लापी सोम मध्ये निम सिगु दु छमिसित वास याना चङ्गु दु सलियाना नि च्याद दुम लालबहादुर बुढाथोकी व उदेबा उदयपुर गाईघाट या सुनिद दुम राजु थापा सिगु जिल्ला प्रहरी ज्याको या प्रमुख प्रहरी उपेक्षक फदिन्द्र प्रसाई धैदिगु ख नेप गेयना ज्या याई धैगु विशेष अनुसन्धान याना दिपी सोम वैज्ञानिक पिन्त थुसी नोबेल चिकित्सा शिर्पा बिगुदो ओटो जेनेटिक्स अध्यायको नेपु गेयना ज्या याईगु धैगु विशेष जैना दिपी निय न्याद या अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डाइसोरोथ जर्मनियन ने छोद या पिटर हेगमान व ने सोद या जर्ज नागेल या त नोबेल शिर्पा लहलागु ख नाइजेरिया या राष्ट्रपति बोला टिनुबु दक्षिण पश्चिम ओन्डो राज्य सैनिक विमान झाक्या सुनिम सिगु पुष्टि यनादिगु दु उडेन तथा एरोस्पेस विकास मन्त्री फेस्ट कोयमा या कथ नि न्याम यात्रु व नेम चालक दल या दुजपी मडुगु धाइदिगु ख थौ देन्यङ्क खसु वैगु अधागु दु कोसी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या हिमाली लागा मोथासे लिसे कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमाली लागा चगुनीको थासे न न्याना वा वैगु व च्वापु गाईगु धागुदो दे या पहाडी लागा मोथासे व तराई या मोथासे न वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदो मिग सुनिगले निन हेगु फुटी पेङ्गु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुगु ख कोय या क्वाज चिन्च्यागु डिग्री सेल्सियस तक कुहा वगु ख थौ सुथे न्याता इजुया निय निगुमिनेटे लुगु सूर्य सनिलिया न्याता इजुया निगुमिनेटे बी नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ्या

गए तो जुर्माना न हो जाए। इधर बादशाह और वजीर भेष बदल कर शहर में घूमने लगे। जब थक गए तो आराम करने की नीयत से एक ताजिर के पास ठहरे। उस ताजिर ने दोनों को चाय पिलाई। बादशाह ने ताजिर से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? ताजिर ने कहा, 20 साल। तुम्हारे पास दौलत कितनी है? ताजिर ने कहा, 70,000 दीनार। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ताजिर ने जवाब दिया, 1। वापस आकर सरकारी दफ्तर में बादशाह ने ताजिर के कवायफ और जायदाद की जांच पड़ताल की तो उसके बयान से मुख्तलिफ थी। बादशाह ने ताजिर को दरबार में तलब किया और वही 3 सवालात फिर से दोहराए। ताजिर ने वही जवाब दिया। बादशाह ने वजीर से कहा, इस पर 1500 दीनार जुर्माना आयद कर दो, क्योंकि इसने 3 झूठ बोले हैं। सरकारी कागजात में इसकी उम्र 35 साल है। इसके पास 70,000 दीनार से ज़्यादा रकम मौजूद है और इसके 3 बेटे हैं। ताजिर ने कहा, ज़िंदगी के 20 साल ही नेकी और ईमानदारी से गुजरे हैं, इसी को मैं अपनी उम्र समझता हूँ। और ज़िंदगी में 70,000 दीनार मैंने एक मस्जिद की तामीर में खर्च किए हैं, उसी को अपनी दौलत समझता हूँ। और 2 बच्चे नालायक और बद अखलाक निकले, एक बच्चा सालेह नेक और अच्छा है, उसी को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। ये बात सुनकर बादशाह ने जुर्माने का हुक्म वापस ले लिया और ताजिर से कहा, हम तुम्हारे जवाब से मुत्तफिक हैं और खुश हुए हैं। वक्त वही शुमार करने के लायक है जो नेक कामों में गुजर जाए। दौलत वही काबिल एतबार है जो राह खुदा में खर्च हो, और औलाद वही है जिसकी आदतें नेक और साले हो। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक और साले बनाए। सामिन, अब इसके बाद फिर से एक नात शरीफ, जिसका बोल है, वो शहर मोहब्बत जहां मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। साहिल रज़ा कादरी की आवाज़ में समात फरमाएँ।

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जा। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ राज्यक कोप सूचना दुरुपयोग केनिहारके कानूनी परिधिमे अनबाक बात बतौलनि अछि। गृहमन्त्री गुरुङ गृह मन्त्रालय आ माथतक निकायमे जिम्मेवारीमे रहल कोनो पदाधिकारी वा कर्मचारी अपन पदीय हैसियत भूलि कऽ गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायके चुहेबाक प्रवृत्ति स्वयं लम्बा समयसँ देख रहल आइ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्पष्ट कयलनि अछि। राज्यक संवेदनशील सूचना ककरो निजी सम्पत्ति नहि अछि, सार्वजनिक जिम्मेवारी थिक, ओ सामाजिक सञ्जालमे लिखलनि अछि। पदसँ सूचनामे पहुँच दैत अछि मुदा दुरुपयोग करबाक अधिकार नहि दैत अछि। ई प्राप्त होवला एहन छोटसँ छोट सूचना, सुराग वा गुप्त जानकारी सेहो अपराध रोकबाक लेल, अनुसन्धान आगू बढ़ेबाक लेल वा भविष्यमे कोनो गंभीर घटनाक सतत स्थापित करबाक निर्णायक भूमिका खेलत। गृहमंत्री गुरुङ राज्य द्वारा सौंपल गेल गोपनीयता ऊपर जानाजान अपन देश संगठन ऊपर विश्वासघात करयवला कोनो व्यक्तिके कानूनी परिधिमे अनबाक स्पष्ट कयलनि। ओ कहलनि जे राज्य सौंपल गोपनीयता ऊपर जानाजान अपन देश संगठन ऊपर विश्वासघात करयवला कोनो व्यक्ति हुए उन्मुक्ति नहि पाओत, कानूनके कटघारामे ओकरा आनब। अर्थमन्त्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले विश्व बैंक समूहक अध्यक्ष अजय वांगा बीच अमेरिकामे उच्च स्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भेल अछि। विश्व बैंक समूहक अध्यक्ष वांगाक निमंत्रणमे प्रतिनिधिमण्डलक नेतृत्व करैत अमेरिका पहुँचल अर्थमन्त्री डॉक्टर वागले आ अध्यक्ष वांगा बीच अमेरिकाक वाशिंगटन DC भेटवार्ता भेल अछि। भेटवार्ता क्रममे अर्थमन्त्री डॉक्टर वागले हाले रसुआक भोटेकसी नदीमे आयल बाढ़िसँ क्षतिग्रस्त भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारक पुनर्निर्माण, वृहत आर्थिक सुधार, बीमा तथा सामाजिक संरक्षणक लेल लगभग $1 अरब बराबरके स्रोत परिचालनके विषयमे घनीभूत छलफल कयलनि। ओहि अवसर पर विश्व बैंक समूहक अध्यक्ष वांगा नेपालमे बाढ़िसँ भेल क्षतिप्रति दुख व्यक्त करैत पुनर्निर्माणक क्षेत्रमे विश्व बैंक उल्लेख सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। सङ्गहि नया सरकार नीतिगत तथा संस्थागत सुधारके लेल उठाओल कदमके प्रशंसा करैत ओ पूर्वाधारमे लगानी विस्तार आ स्वदेशमे रोजगारी सृजना कयल जेबाक आवश्यकता पर जोर देलनि। अध्यक्ष वांगा एशियाली विकास बैंक ADB आ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC सहितक विकास साझेदार संग समन्वय कऽ नेपालक प्राथमिकताक क्षेत्रमे संयुक्त लगानी विस्तार करबाक लेल विश्व बैंक नया पहल करबाक जानकारी देलनि। नेपालक लेल विश्व बैंकक राष्ट्रीय निर्देशक डेविड सेफलेनक अनुसार विगत 3 दशकमे विश्व बैंक समूहक अध्यक्ष आ नेपालक अर्थमन्त्री बीच भेल ई पहिल प्रत्यक्ष भेट आ द्विपक्षीय भेटवार्ता थिक। भेटवार्तामे विश्व बैंकक उपाध्यक्ष द्वय जहानस जट आ जुनेद अहमद सहित उच्च पदस्थ अधिकारी सभक सहभागिता छल। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा आ संचार सचिव राजेंद्र कुमार पौड़ेल बीच आर्थिक वर्ष 2083-84 लेल कार्य सम्पादन समझौता सम्पन्न भेल अछि। ओहि अवसर पर संचार सचिव पौड़ेल संग मंत्रालयक महाशाखा प्रमुख तथा मंत्रालयक माथतक विभिन्न निकायक प्रमुख सेहो कार्य सम्पादन समझौता कयलनि। ओहि अवसर पर संचार सचिव पौड़ेल संग नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणक अध्यक्ष अर्जुन घिमरे, नेपाल टेलीकॉमक प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रक कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना, राष्ट्र समाचार समितिक महाप्रबंधक संदीप राय, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाक कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी वसनाथ, गोरखापथ संस्थानक महाप्रबंधक हिकमक बहादुर रावल, विज्ञापन बोर्डक अध्यक्ष संतोष श्रेष्ठ कार्य सम्पादन समझौता कयलनि अछि। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 तथा आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 के व्यवस्था अनुसार मंत्रालय कार्यक्रमके थप जिम्मेवार, परिणाममुखी आ मापन योग्य बनेबाक लेल कार्य सम्पादन समझौता कयल गेल अछि। आई मंत्रालयमे आयोजित कार्य सम्पादन समझौता हस्ताक्षर तथा आदान प्रदान कार्यक्रममे संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा कार्य सम्पादन समझौताके औपचारिकतामे सीमित नहि कऽ सम्बन्धित निकायक दैनिक कार्य सम्पादन आ वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेजक रूपमे लेल जेबाक बात बतौलनि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल उच्च शिक्षा सुधारके लेल नीतिगत आ संरचनागत सुधारके काज तीव्र गतिमे भऽ रहल बतौलनि अछि।
शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय द्वारा शिमला में आई आयोजित उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रम के संबोधित करते मंत्री पोखरियाल नया ऐन निर्माणक संगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपक काज के सेहो संगे संगे आगू बढ़ाओल स्पष्ट कयलनि। ओ काठमांडू कोठा में मात्र बैसिकक नीति बनौला पर स्थानीय आवश्यकता छुटबाक कारणे जनप्रतिनिधि आ सरोकार वाला सब संग प्रत्यक्ष संवाद के धरातलीय यथार्थ बुझबाक लेल ई कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहल दोहरौलनि। प्राविधिक शिक्षा विद्यालय तहक रूपांतरण संबंध में मंत्री पोखरियाल प्रधानमंत्रीक चाहना अनुसार प्रदेश में विश्व स्तरीय विद्यालय सभक अवधारणा आगू बढ़ाओल बतौलनि। सीटी भीटी आ नर्सिंग शिक्षा में देखल गेल भ्रम तथा समस्या सभक चर्चा करत ओ भारत में कक्षा 10 पश्चात नर्सिंग मान्यता नहीं रहल यथार्थ स्पष्ट कयलनि। नेपाल में एकर कोटा तथा संबंधन संबंधी समस्या सब नया नेतृत्व आ बन वाला नया ऐन मार्फत जल्दी समाधान होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल राजमार्ग तथा पुल निर्माण आ करित काल उच्च बाढ़िक सतह के अध्ययन का सुरक्षित स्थान में पूर्वाधार निर्माण करबाक कानूनी सुधार आगू बढ़ाओल बतौलन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गतक हिमालय में जलवायु परिवर्तनक प्रभाव आ जलवायु न्याय तथा भोटे कोसी त्रिशूली विपद संबंधी संसदीय विशेष समिति का आई बैसल बैठक में मंत्री लमसाल बाढ़ तथा विपद से प्रभावित क्षेत्र में पूर्वाधार विकासक संगे प्रभावित जनताक लेल सुरक्षित आ मर्यादित आवास निर्माण के सरकार प्राथमिकता में राखल बतौलन। जलवायु परिवर्तनक प्रभाव आ भोटे कोसी त्रिशूली विपद संबंधी छलफल में मंत्री लमसाल रसुआ गढ़ी के व्यापारिक शहर के रूप में विकास का चीन संगक व्यापार थप सुदृढ़ करबाक प्रमुख सीमा नाका के रूप में विस्तार करबाक गुरु योजना तैयार भ जानकारी सेहो दिलन। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम विपद में रहकर जैन गुमार हार नागरिक सभा के मृत्यु घोषणा मृत्यु दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से आगू बढ़ेबाक लेल आवश्यक कानून निर्माण भ रहा जानकारी दिलन। बैठक में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ पड़ोसी राष्ट्र भारत आ चीन स्वास्थ्य सेवा तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग करबाक लेल सहमति जनाओल जानकारी देत हरित निर्माण के प्राथमिकता देल जेबाक बात बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक 15 महाधिवेशन अंतर्गत आई तेसर दिन बंद सत्रक छलफल सम्पन्न भेल अछि। बंद सत्र में सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि सब सभापति गगन कुमार थापा प्रस्तुत कयल राष्ट्रीय पुनर्जागरण आ समुन्नतिक राजनीतिक प्रस्ताव उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा के राजनीतिक संस्कृतिक क्षय आ युगानुकूल रूपांतरणक अभिभारा संबंधी समसामयिक प्रस्ताव महामंत्री गुरुराज घिमरेक संगठन संबंधी प्रतिवेदन आ कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठक आर्थिक प्रतिवेदन ऊपर छलफल भेल। महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिक संयोजक सुरेश राज आचार्य जानकारी दिलन। छलफल में 7 प्रदेशक अतिरिक्त भातरी तथा स्वैच्छिक संस्थाक प्रतिनिधि सभक सहभागिता अछि। बंद सत्रक तेसर दिनक छलफल काल्हि भिनसर 10:30 बजे पुनः संचालन होयत। काल्हिक सत्रक प्रारंभ में पार्टी सभापति थापा संबोधन करबाक कार्यक्रम अछि। आबयवला बड़ा दशैं दीपावली आ छठि सहितक पर्व त्यौहार के लक्षित कर जिलाक प्रमुख राजमार्ग तथा संवेदनशील स्थान में 24 घंटा यात्रु सहायता कक्ष संचालन में आनल गेल अछि। बीपी आर्निको राजमार्ग सहित मुख्य सड़क के चौक बनेपा धुलखेल पांचखाल दुलालघाट पनौती आ मंगलटार में सहायता कक्ष स्थापना कयल गेल अछि। एहि बीच बनेपा के चार दोबाटों में आई आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रहरी कार्यालय काबड़े प्रहरी उपेक्षक रविन्द्र कार्की यात्री सहायता कक्षक औपचारिक शुभारम्भ कयलनि। ओहि अवसर पर ओ पर्व त्यौहार मनेबाक लेल घर वापस भेनिहार यात्री के बिचौलिया से भ सकवला भाड़ा ठगी देल जाय वाला शास्ति आ सवारी साधन में क्षमता से अधिक यात्री राखे वाला प्रवृत्ति नियंत्रण करबाक लेल सहायता कक्ष दिन राति 24 घंटा संचालन में रहबाक जानकारी दिलन। उपेक्षक कार्की के अनुसार सहायता कक्ष में खटल प्रहरी कर्मचारी यात्री के तोगल के भाड़ा दर के विषय में जानकारी करेबाक सुरक्षित यात्रा के लेल सहजीकरण करबाक तथा कोनो समस्या पड़ला पर तत्काल सहायता उपलब्ध करेबाक जनाओल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय यात्रा क्रम में कोनो समस्या ठगी असुरक्षा भेला पर निकट के सहायता कक्ष और नेपाल प्रहरी के निःशुल्क नंबर 1 में संपर्क करबाक लेल सर्वसाधारण से अनुरोध सेहो कयलक अछि। रेडियो नेपाल से सुनने छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटे कोसी बाढ़ी प्रभावितों के लिए तत्काल अस्थायी आवास निर्माण का काम आगे बढ़ाने का राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का निर्णय। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन के तहत नए नेतृत्व चयन के लिए आज उम्मीदवारों का नामांकन। बंद सत्र की चर्चा कल फिर से होगी शुरू। दशहरा के लिए आश्विन 23 गते से टिकट बुकिंग शुरू। और इस वर्ष भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक फ्रांसिस हॉलजेन को किया गया प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने रसुआ के भोटेकोसी बाढ़ प्रभावितों के लिए विभिन्न साझेदार संघ संस्थाओं और स्थानीय तह के साथ मिलकर तत्काल अस्थायी आवास निर्माण का काम आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डॉ. धर्मराज उप्रेती ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुनर्निर्माण में सहयोग करने वाले विकास साझेदार संघ संस्थाओं के किस स्थानीय तह में कितने घर बनाकर देने हैं, इसकी जानकारी प्राधिकरण को देने का आग्रह किया जाएगा। बैठक के निर्णय के अनुसार सहयोगी संस्थाओं को नेपाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर निर्धारित मापदंड के अनुसार घरों का निर्माण करना होगा। इसी तरह प्रभावित क्षेत्र के वास्तविक लाभग्राही परिवारों का वितरण संकलन और कितने घर बनाने हैं इसका आंकड़ा तय करने के लिए स्थानीय तहों को पत्र भेजने का निर्णय भी किया गया है। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन के तहत आज तीसरे दिन बंद सत्र की चर्चा समाप्त हो गई है। महाधिवेशन प्रबंधन समिति के संयोजक सुरेश राज आचार्य ने बताया कि बंद सत्र में महाधिवेशन प्रतिनिधियों ने पार्टी सभापति गगन कुमार थापा द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय पुनर्जागरण और समुन्नति संबंधी राजनीतिक प्रस्ताव उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा के राजनीतिक संस्कृति के क्षय और युगानुकूल रूपांतरण की जिम्मेदारी संबंधी समसामयिक प्रस्ताव महामंत्री गुरुराज घिमिरे की संगठन संबंधी रिपोर्ट और कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ की आर्थिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा में सातों प्रदेशों के साथ ही भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बंद सत्र की चर्चा कल सुबह 10:30 बजे फिर से शुरू होगी। कल के सत्र की शुरुआत पार्टी सभापति गगन थापा के संबोधन से होगी। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने कहा है कि राजमार्ग और पुलों के पुनर्निर्माण के दौरान बाढ़ के उच्चतम स्तर का अध्ययन कर सुरक्षित स्थानों पर पूर्वाधार निर्माण के लिए कानूनी सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रतिनिधि सभा की संसदीय विषय समिति की आज हुई बैठक में मंत्री लम्साल ने बताया कि बाढ़ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वाधार के साथ प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास निर्माण को सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि रसुआगढ़ी को व्यापारिक शहर के रूप में विकसित कर चीन के साथ व्यापार मजबूत करने के लिए गुरु योजना तैयार की जा रही है। बैठक में सांसदों ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रभावी जलवायु कूटनीति, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय द्वारा शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पोखरेल ने स्पष्ट किया कि नए कानून के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप तैयार करने का काम भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा और संचार सचिव राजेंद्र कुमार पौड़ेल के बीच आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए कार्य संपादन समझौता हुआ है।
इसी अवसर पर मंत्रालय के महाशाखा प्रमुखों और मातहत विभिन्न निकायों के प्रमुखों ने भी संचार सचिव के साथ कार्य संपादन समझौता किया। समझौते के तहत सुशासन, सार्वजनिक सेवा में सुधार, संचार पूर्वाधार विकास, डिजिटल तकनीकी में पहुंच बढ़ाने और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता सुधार करने की प्राथमिकता दी गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।

0: प्राप्त गरौ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अब बाँकी समाचार। नुवाकोट क्षेत्र नम्बर एक के प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने रसुआ की भोटेकोसी नदी में गत भदौ 10 गते आई बाढ़ से प्रभावित नुवाकोट की विभिन्न पालिकाओं के स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके उनकी समस्याओं, शिकायतों, मांगों और सुझावों की जानकारी ली है। संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करते हुए बाढ़ से हुई क्षति, राहत वितरण की स्थिति, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण के कार्यों और तत्काल आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के विषय में जानकारी ली। इस वर्ष विजयादशमी का शुभ साहित्य कार्तिक 4 गते बुधवार सुबह 10:26 पर उत्तम है। ये जानकारी नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति ने दी। कार्तिक 4 गते सुबह 8:49 के बाद देवी विसर्जन करने के बाद 10:26 पर शुभ साहित्य पर मान्यजनों से देवी के प्रसाद के रूप में टीका लगाया जा सकता है। विजयादशमी के दिन पूरे दिन टीका लगाया जा सकता है। इस वर्ष दशई में घर जाने वाले यात्रियों के लिए इसी आश्विन 23 गते से टिकट बुकिंग खोली गई है। यातायात व्यवस्था विभाग में आज नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सिटौला, विभाग के महानिदेशक राजीव पोखरेल सहित पदाधिकारियों की बैठक ने यह निर्णय लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को प्रदान किया गया है। स्वीडन की रियल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने उन्हें आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में निर्णायक योगदान और खगोलीय स्रोतों में आने वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। फ्रांसिस हालजेन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में भौतिक के प्रोफेसर है। उन्होंने दक्षिण ध्रुव की बर्फ के नीचे विशाल न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाने की अवधारणा वर्ष 1988 में प्रस्तुत की थी। इसी अवधारणा से विकसित आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी करीब 1 घन किलोमीटर बर्फ के भीतर हजारों प्रकाश सेंसर के जरिए न्यूट्रिनो का पता लगाती है। न्यूट्रिनो बेहद सूक्ष्म कण होते हैं और पदार्थ के साथ बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर घोस्ट पार्टिकल यानी भूत कण भी कहा जाता है। यह कण अंतरिक्ष की अत्यधिक ऊर्जावान घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के आर पार भी गुजर सकते हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटेकोसी बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल अस्थायी आवास निर्माण का काम आगे बढ़ाने का राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का निर्णय। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन के तहत नए नेतृत्व चयन के लिए आज उम्मीदवारों का नामांकन। बंद सत्र की चर्चा कल फिर से होगी शुरू। दशहरा के लिए आश्विन 23 गते से टिकट बुकिंग शुरू। और इस वर्ष भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को किया गया प्रदान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।